प्यारे बच्चों, इस कृपा के समय में मैं तुम्हें अपने पीछे आने के लिए बुला रही हूँ। उनके लिए प्रार्थना करो जो प्रार्थना नहीं करते और शांति और खुशी नहीं चाहते, जो सिर्फ सबसे ऊपर वाला ही दे सकता है। तुम्हारी आत्माएं उम्मीद की खुशी में एक हो जाएं और तुम्हारा दिल शांति से भर जाएगा। तुम्हें यकीन हो जाएगा छोटे बच्चों कि सब कुछ अच्छा होगा और भगवान सबको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि जो अच्छाई तुम देते हो वो तुम्हारे पास लौटेगी और खुशी तुम्हारे दिल को खोलेगी, क्योंकि तुम भगवान के साथ हो और भगवान में हो। धन्यवाद, हमने माइकल को जवाब दे दिया है।